0: ऐशक सिमांगु ओम वानम वानम वनांगु ऐशक सिमांगु।
1: Phone. Radio. À poil. Et à vapeur.